0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

रखने के लिए आपको optical.ca पे चाहिए, आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450 का पर कॉल कीजिए 9054567333 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

0: is a product of Samosa and Sweet Factory at all Indian grocery stores.
1: भारत गुड़गा भाव मन तन देह सुखाली रहा पगत उदाहरण सतगुरु मेरा मोह किसका परभाषा बंस लय सब सच्चा साहेब सुन नानक की अरदास सोहत महला पंजवा बख्शा पाठ हम परमेश्वर सगले रूपिदारे की सरणी उभरे कागज सगल समारे हर जिन सिमरिया नाम आधारे ताप उतारिया सतगुरु पूरे अपनी कृपा धारे रहाओ सदा आनंद करो मेरे प्यारे हर गोविंद गुरु राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साच सबद सत पाखिया सूरत महला पंजवा भय कृपा स्वामी मेरे पित सगले दरबार सतगुर ताप गवाया भाई ठान पई संसार अपने जी जत आपे रखे जमहे कियो हटदार हर के चरण हृदय उड़तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसकी सरणी उभरे भाई जिन रचिया सब कोई करण कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु ध्याई है भाई मन तन शीतल होए सोरठ महला पंजवा संत हो हर हर नाम ध्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार

कि परमेश्वर उधरिया सब संसार और रखवाला पर मेरा सतगुरु रखवाला हुआ काल कृपा प्रभात तेरा क्या हर गोविंद नवा निरुआ रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साथ सकत ते सब पल पाए सतगुरु के बल जाई हलत पलत कर तो वह सवारे हमरा गुण अमर गुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुरु तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी अजंत सब तिसके किए सोई संत सहाए अपने सेवक किया मेरा तै पूरन भई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरा दान और पूरा पूरी सब राखी ओए सर दयाल रहा अन दिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे जो बारिक पित माता सोरठ महला ठाठ पाई कंतारे ताप छोड़ गया परवार गुरपुरा है राखी सन सच्चे की ताकी परमेश्वर आप हुआ रखवाला साथ सहज सुख किन महे उपजे मन होवा सदा सुखाला रहाओ हर हर नाम दियो दारू तिन सगला रूप

से बिगर न लागे जब अलख अपेर कर्त मुनि पई गुन गाए भक्त गया हर नाम ते आए रहा सबनी थाई रव्या आद जुगाद जाता मन परता गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब खाई मुठे सब सुख पाए सतगुर टूटे पार हम तब भय रखवाले

प्रयत्सति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखमे।

से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मिली ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रांटन टेलीफोन

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और अब आपके लिए समर तो पूरी पहुंच चुकी है और बच्चों को भी स्कूल बंद हो गए हैं। आप अपने बच्चों को कोई कैंप्स में ले जा रहे हैं, कोई स्विमिंग, कोई ना कोई प्रोग्राम में आप जरूर अपने बच्चों को डालिए ताकि समर में उनका जो टाइम है अच्छा गुजर जाए। काफ़ी सारी एक्टिविटीज हर एक टाउन में होती हैं बच्चों के लिए, तो आप जरूर वो कैलेंडर देखिए और फिर अपने बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कीजिए। उसका मतलब ये हो जाता है कि बच्चों को फिर इधर उधर की कोई और गलत चीज़ें करने का मौका नहीं मिलता। और माँ बाप को ही अभी छोटी उम्र में तो उनका जो टाइम होता है वो माँ बाप को ही प्लान करना पड़ता है। तो अगर आप अभी से उनका प्लान थोड़ा बहुत करते रहेंगे तो उनको आदत फिर पड़ जाएगी कि हमारा जो टाइम है समर टाइम है उसमें हमें कुछ ना कुछ करना है, आदत पड़ जाएगी फिर उनको। तो आपके लिए भी बेहतर होगा, उनके लिए भी, ताकि वो जिंदगी में कहीं भटकेंगे नहीं। आपको थोड़ा सा टिप दिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप करिएगा। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर से साथ। अच्छा जी, भैनों भरावो सब सारे नु, जे तुसी नहीं सुनिया पहला ते तुहानू सारिआं नु नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आप उम्मीद रखते हो वीकेंड में भी आप अच्छा टाइम बता रहे हो। अभी इस बार लॉन्ग वीकेंड नहीं हुआ है, जुलाई 1 का, तो मिडल ऑफ द वीक आपको एकदम छुट्टी मिल गई वेडनेसडे की। तो कई लोग अपनी तरफ से ही लॉन्ग वीकेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आदत पड़ गई होती है ना कि हम लॉन्ग वीकेंड मनाने की। कभी कभी मेरे ख्याल बहुत सालों बाद ऐसे हुआ कि जुलाई 1 लॉन्ग वीकेंड को नहीं आई। तो अब आपके लिए, अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो आपने और जानकारी लेनी है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स रोड काम पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए। उनके वहाँ आपके लिए लेटेस्ट बारबेक्यूज, आउटडोर फर्नीचर, सब कुछ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो आप जरूर उसमें जाइए और देखिए कि क्या कुछ वहाँ पे है आपके लिए नए नए अगर आपने बढ़िया फर्नीचर आउटडोर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। और एक लोकेशन आप उनकी आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मिलेगा, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स रोड काम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप जा सकते हो जी। आप फिर आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स रोड काम पर और ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर आप कॉल कर सकते हो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपने मूव होना है तो आज के मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव करने में मदद करते हैं। बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, हिफाजत से आपके सामान को ले जाते हैं। तो आप मूविंग के लिए आज ही उनका ट्रक बुक कर लीजिए। समर है, बहुत बिजी होते हैं। 416-524-8004 पे एच के मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने लंदन के आसपास इलाके में रहते हैं, आपको कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन डिपू आपके लिए अब लंदन में मौजूद है। तो आप मास्टर कलिजन डिपू डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। किचनर वाटरलू गोल्फ में अगर आपने घर खरीदना है, बेचना है तो आप नसीब टेंट को कॉल कीजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। 519-546-1260 पे कॉल कर सकते हैं। आपने खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए न्यूली रेनोवेटेड है और बहुत बढ़िया ब्रिटानिया क्रेडिट रिव्यू भी मौजूद है। तो आप और जानकारी के लिए 905-814-1730 पर कॉल कीजिए। 905
8141730, अपने टफ रिपेयर करवानी है तो आप बेस्ट टफ रिपेयर एंटायर सेंटर आपके लिए 1715 मौजूद है। और जानकारी के लिए आप 905-624-0055 पर कॉल कीजिए, 905-625-624-0055 पर आप बेस्ट टफ रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको बढ़िया बढ़िया आपको किसी तरह की भी आपको बढ़िया बढ़िया सामान लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज, बहुत बढ़िया सामान आपको मिलेगा, फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर। तो आइए अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। तो पंजाबी का गीत लता जी के गाए हुए तो लता जी का गाया हुआ कोई पंजाबी सॉन्ग आपको सुनाती हूँ। उन्होंने हीर बहुत ही बढ़िया गाई है, कई लोगों ने आर्टिस्ट हैं जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने गीत गाए हैं। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओह या या देयर इज अ वेरी नाइस सॉन्ग लता जी सैंग, लाइया दे तोड़ लवानी छड़ के ना जावेगी, बट दैट वाज ए एट दैट टाइम व्हेन दैट सॉन्ग केम आउट एवरीबॉडी वाज सिंगिंग इट। आप जानते हो इंडिया में तो लोग सड़कों में, गलियों में, कहीं भी गीत गाते हैं ऐसे कॉमन सॉन्ग।

0: हम सभी का एक बार फिर से स्वागत है घर से सर्वी विक्रम
1: ऑन बोर्ड रॉकी।
0: आपको जरूर पसंद आया होगा प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हो, सराहते हो, हम आपको आते हैं दिल से धन्यवाद करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह हमें आपका साथ मिलता रहेगा, क्योंकि अगस्त के महीने में 94 में मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो 31 इयर्स हो गए हैं प्रोग्राम को करते हुए। तो इसीलिए आप का साथ मिल रहा है, तो इसीलिए हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, या फिर आपने बढ़िया बढ़िया आपको फर्नीचर चाहिए, आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है, बहुत बढ़िया रेट पे, बढ़िया क्वालिटी में। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनकी वीकली स्पेशल देख लो, फिर अपना ऑर्डर बुक करो 905-749-0045-799-0045। आपको आप लंदन के आसपास रहते हो, आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, तो मास्टर कोलिजन डिपो अब लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले लो और फोन कर लो। तो अब अगर आपने टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है, तो खुशवंत सिंह बैंस को कॉल करो 416-670-1313-416-677-1313 पे आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने मूविंग करनी है, तो आपके लिए HK मूवर्स बहुत बढ़िया सर्विसेज कनाडा भर में मदद करते हैं मूव होने के लिए। तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लो मूविंग के लिए 416-524-4416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए पंजाबी के गीत ही सुनाएंगे, लता जी के ही सुनाएंगे। सो लेट्स

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे इसी तरह का बढ़िया सा मनोरंजन लेकर के। आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। तो तब तक के लिए नानक नाम चढ़ती चला तेरे पान स्वर्धा पला है वंडरफुल एंड सेफ डे। गर्मी बहुत है, खूब सारा पानी पीजिए और कोशिश करिए ठंडी जगह में रहिएगा। खास करके जो एल्डरली हैं उनके लिए मेक श्योर करें कि खूब सारा पानी हो उनके पास, ज्यादा गर्मी में ना अपने आप को रखें। तो टेक केयर, इस गाने को एंजॉय कीजिए आरजी फिल्म का।

0: ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए आपको optical.ca पे चाहिए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5333 पर कॉल कीजिए। 905-456-7733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: बाबूजी कमाल।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरुआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
3: Tal gur seviya ahnis sahaj subhai darshan parsya guru ka जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसंदी नूर अरसो पुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कुटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाहो जिस पास बैठिया सोहिया

0: Central, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: सी कि ओ पुड़े खाई का मतलब सी कि आप भी अच्छा खाई तो ज मेक श्योर करी कि जेडे तेरे नाल लगे ने वो भी चंगा खाते हो, उन्हों का जीवन भी चंगा होवे, तेरा राजकाल महान होगा वधूगा अपने आप, नहीं तो गर्क जूगा। मैं शबानू की गल करदा, असी छावें छावें जाई वाले इंसान हाँ, पूरे किरती सिरड़ी हर जगह पर पहुँचते हैं, कम लोगों के टाइम ना करते हैं, जो फड़िया वो नबेड़ दें, कई चीज़ा साढ़े हाथ च नहीं होंगे, टाइम पर नहीं हो पाया, उन्होंने माफ़ी। 15 साल के ब्रॉडकास्टिंग के मैं पब्लिकली काम किया, लोगों लिए बोलिया, सब कुछ किया, किसी ने निजी दुश्मनियाँ नहीं कटिया, किसी से निजी वार नहीं किते, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो CRTC लाओ कर दौ मैं बोलिया, धर्म दिया उणताइया तो लैके स्पैशल जिहड़ियां राजनीति च हो रही गलतियां ने उन्हां नूं लोकां तक लैके गए ट्रांसलेट करके, लोकां च पॉजिटिविटी, चाहे बीमारियां आईयां, चाहे माड़े टाइम आए, चाहे अज दे समें ने, लोकां च पॉजिटिविटी डिलीवर कीती तां जो किते दा कुछ सुन के उन्हां नूं लगे कि नहीं यार चढ़दी कला च रहना हैगा। बहुत काम किते, ते जिहड़े लोग दुपहरां नूं उठदे ना रात नूं सौंदे नहीं, उन्हां दी लाइफ नरक है ते ओह नरक च जिउंदे पए ने। कोशिश करो तुहाड़े जवाक जल्दी सवेरे उठ जाण, उन्हां नूं आदतां ना पाओ रात नूं लेट सौण दीआं, सवेरे जल्दी उठण ते जल्दी ओह सौण, कोशिश करो तुसीं भी जल्दी सौवो ते जल्दी उठो। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਬਾਨੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿਓ।
1: ਸੋ ਅਮਨ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਔਰ ਡੋਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਕਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਹਮ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਤੋ ਅਬ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਮ ਲੋਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੀਮ ਲੇਕਰ ਆਏ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 70-80 ਡਾਲਰਸ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਆਪਕਾ ਖਰਚਾ ਆਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ। ਅਮਨ ਭਾਈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੈ 70-80 ਡਾਲਰ ਪਰ ਮੰਥ ਕੀ ਕਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਤੀ ਹੈ और अगर आपका सेमी डिटैच है तो मान के चलिए कि 90-100 डॉलर के बीच में। सो ऐसे दौर में जहाँ पे अभी आपको क्लाइमेट चेंजेस बहुत जबरदस्त दिख रहे हैं, कनाडा ने कभी 45 नहीं देखा, अब हमने 45 भी देख लिया है, आपका एसी इफेक्टिव नहीं है, या आप सर्दियां अभी गुजार के आए हैं जहाँ पे आपकी विंडोज एयर टाइट नहीं थी और आपको लीकेज मिल रही थी, ठंडी हवा आ रही थी, दो चीजें होती हैं, एक तो आपका घर खराब होता है ऑब्वियसली क्योंकि मॉइस्चर आता है, मोल्ड आता है, दूसरी चीज है आपका फर्नेस का बिल बहुत दूसरे लेवल पे चले जाता है। जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है अगर आप एनर्जी स्टार विंडोज लगाते हैं तो आपका बिल जो है अप टू 30% तक डाउन होता है। तो फॉर एग्जांपल आपका 400 का बिल आ रहा है, 300 का आ रहा है, यू आर ऑलमोस्ट सेविंग 100 डॉलर पर मंथ। तो वाई नॉट गो ऑन फाइनेंस स्कीम और अब अपना 100 डॉलर या 90 डॉलर 70 डॉलर दे के अपना फर्नेस का भी बिल बचाएं और अपने घर की ब्यूटी भी बढ़ती है, प्लस ब्यूटी से ज्यादा यूटिलिटी है। ये जो प्रोडक्ट है ये मस्ट हैव है, ये कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है कि इससे घर बड़ा सुंदर दिखेगा और गुड टू हैव है, ये मस्ट हैव है। अगर आपके घर में नहीं है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, डेफिनेटली कंसिडर करिए कि आपको विंडोज अगर चेंज करानी है तो उसको करा लीजिए। ये जो फाइनेंस वाली ऑप्शन है ये कब आएगी दोबारा आई डोंट नो, बट हाल फिलहाल के लिए है। तो ज्यादा जानकारी के लिए 416-206-3200 और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग अपना घर बेचने का सोच रहे हैं अभी तक और जो उनकी विंडोज की हाल खराब है और उस वजह से उनको ऑफर आने का लग रहा है कि नहीं आएगी या आ नहीं रही है अभी, तो आप लोगों के लिए एक स्कीम है कि हाँ जिनके घर लिस्टिंग पे सिर्फ होने के लिए आपको एक 3 महीने की विंडो दी जाएगी, आप अपना दरवाजे चेंज कराइए, विंडोज चेंज कराइए, 90 डेज के पीरियड के लिए आपको कोई किश्त नहीं देनी, कोई पेमेंट नहीं करनी। आफ्टर 90 डेज आपको जब आपका घर बिक जाएगा आप उसमें से जो भी आपका आता है बचता है आप वो विंडोज का उसमें से पे कर सकते हो। सो ये एक एक्सक्लूसिव रेडियो आवाज के लिए मैंने स्कीम निकाली है कि जो लोग अपना लिस्ट कर रहे हैं घर वो इस 90 डे पीरियड का फायदा उठा सकते हैं, 90 डेज तक नो पेमेंट नो इंटरेस्ट। जी अमन भाई
0: थैंक यू सो मच, और नंबर नोट करो शिवानु दा, विंडोज और डोर चेंज करने ने किसी ने भी किश्तां मिल जाएंगी थोनू वधिया तरीके नाल डील करनगे। शिवानु नंबर दे दो अपना
1: 416-206-3200
0: और टॉप दे लेवल दी सर्विस विंडो तुसी दो एस्टीमेट बाहरों ले लो, तीजा इनू बुला लो, नाल विंडोज लेके आऊगा, तुहानू विंडोज दिखा दूगा, उहदे शीशा दिखा दूगा, किथे दीआं बणियां दसूगा, तुसी आपे बाहरों पवा लिओ, जे तुसी पवा सकदे हो तुसी पवा नहीं सकनी आ। 416-206-3200 ते कॉल करनी आ।
2: थोड़ी जी गर्मी तो राहत मिली हुई है, ते जे ग्रोसरी कर निकले हो ता एक गेड़ा जरूर मारना जी फ्रेश ग्रोसरी डिपो वाले पासे नू, दालां बहुत ही वधिया वधिया डील दे उत्ते लगी हुई है जी, मसूर होल मसूर रेड स्प्लिट जे दालां तुसी लेके

0: खास डबल कार गराज वाले बड़े डिटैच कर सिर्फ 9 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 900s रिलीजिंग वेरी सून पब्लिक रिलीज तो पहला बेस्ट लॉट एंड लॉट कॉर्नर लॉट दे जल्द तो जल्द संपर्क करो एट 416-302-0016 416-302-0016
1: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसे तरह दे लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है ता तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381

0: 32, 55, 80, 93 एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
3: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है 12x30 फुट दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है पिछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222

0: 30 से 90 डेज में आपके खाते में फंडिंग आती है, जितना आपको एस्टिमेट देंगी उससे 500,000 ऊपर नीचे आएगा, पहले बता रहे हैं। अब 40,000-70,000 की बातें करें तो 500 ऊपर नीचे रहता है गवर्नमेंट के डेटा में, ठीक है। ओके, अब इसमें कहते हैं 30 से 90 डेज में आपके अकाउंट फंडिंग आती है, हमारी फीस कितनी है, कोई कैच नहीं है, कोई हिडन फीस नहीं है, सिर्फ 199 या $499 फीस है। ऑनेस्टी से हम काम करते हैं, मीठी बातें नहीं करते, पहले हम पैसे कुछ लेते नहीं है, बाद में आप लोग देते नहीं है काम होने के बाद।
1: दोस्तो जेड़ा कोई बिजनेस अदारे नाल असीं किवें जज करदे आ, चलो मिलदे आ गिलदे आ, सारा प्रोसैसिंग चेक कीती जांदी है, इस तों बाद जिहड़ी अज तक नागपाल साहब ने कदे भी मैनू कहण दा मौका ही नहीं दिता कि भाजी अपनी महीना पूरा हो गया तुसी पेमेंट रहिंदी है, महीने तो पहला चाहे इनवॉइस मैं भेजण दे विच लेट हो जा, इनवॉइस इह नागपाल साहब आप टाइम दा ध्यान रख के पैसे सेंड कर देने। सो कहण दा भाव इत्थों बंदे दी ऑनेस्टी, बंदे दे कम करन दा तरीका वह पता लगता। तो बाकई नागपाल जी लास्ट वीक अपने कोल ऑफिस दे विच भी आए सी, ते इन्हां ने जिन्ने सवाल इन्हां तों पुछे बेवाकी नाल जवाब दिते। इह कहिंदे असीं इक जरी आ, तुसीं सरकार ने ग्रांट ते लोन देना, तुसीं उहदे लाभकारी हो, असीं उहदे च हैल्प करनी है ताकि तुसीं कोई कोई गलत फार्म ना भरिया जावे, कोई गलत टाइप ना हो जाए, तो तुहानूं उह स्कीम दा चंगे तरीके नाल लाभ मिल सके। सो नागपाल जी इहदे विच बड़ा चंगा काम कर रहे हो जी, कंप्लीमेंट तुहाडे लई ते धन्नवाद। सो अज जे तुसीं कॉल करदे, तुसीं ओवर द कॉल ही परिवारां नूं दस दोगे कि उह किन्ने क फंड लई एलिजिबल ने जी?
0: आज हम लाइक डेटा ले लेंगे आप,
1: मतलब ओवर द कॉल ही तुसीं दस सकदे हो
0: बेसिक किस ओवरकॉल दस सकते हैं, बट अभी मेरा एक ही स्टाफ काम पे है।
1: नहीं चलो वो तो नो प्रॉब्लम, एक बार कॉल आ गया मेरे कहने का भाव तुहानू असी ऑफिस आके मिलना पूजा, ओवर द कॉल ही तुसी सानू दस दो।
0: ओवर कॉल भी हो सकता है, प्रॉपर ऑफिस है, टिमॉटन में नहीं मिलते जी, हरण डरी डरी पे प्रॉपर ऑफिस है हमारा। आप ओवर द कॉल पे एस्टिमेट ले ले हमसे, आपको फिर लाइक आपकी जितनी इनकम कम है यहाँ पे गवर्नमेंट आपको फंडिंग कर रही है, बैंक नहीं कर रहा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जीरो है आप एलिजिबल हैं, आपकी इनकम 2024 के एनओए पे कम है अगर $70,000 से, आप सिर्फ तभी हमें कॉल करें क्योंकि तभी आपको फायदा है। और आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड हाउसवाइफ है, चाहे आप पेंशन पे हैं, चाहे आप 75 के, चाहे आप 30 के हैं, आपके किड ज्यादा है, ज्यादा फंडिंग बनती है आपकी, आप सब लोग एलिजिबल है, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है ना। तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, आपको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड देन टाइम कम रह गया है, टाइमली अगर आप एक्शन लेंगे तो ही आपको फायदा है।
1: नंबर साझा कर,
0: आपका फायदा है ज्यादा, आपका है, हमारा फायदा
1: नंबर साझा कर,
0: $200 है
1: जी।
0: हाँ जी, नंबर है जी 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-31-75।
1: सो दोस्तों जे कोई गवर्नमेंट स्कीम दे रही है तो उसका फायदा चुकन दे विच अपन नूं भी दोहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इहदे विच कोई ये नहीं है कि कल्ली ग्रांट आ जां लोन आ, एजुकेशन फ्री हो रही है तुहाडी, सब तो मेन चीज़ आ गवर्नमेंट कहदे लई आ कि उह एजुकेशन लई किहड़े किहड़े कोर्स ने, किहड़े कोर्स का की फायदा हो सकता, अगले लिंक दे विच होर बहुत सारी गल्लबात करांगे। पर तुहाडे मन दे विच कोई क्वेश्चन आ, नंबर टू कॉल, ये नंबर घुमाओ 437-264-31-75। नागपाल जी 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-31-75। बहुत शुक्रिया नागपाल साहब, धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: आपको, और एग्जाम्पल देते हैं एक छोटा सा, अगर आप घर की मोर्टगेज लेते हैं, जैसे अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, 2500 मोर्टगेज थी, 1500 ब्याज, 1000 प्रिंसिपल, ठीक है, 20 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ 50,000 का लोन ले रहे हैं, उस पर सिर्फ $5,000 का ब्याज है 10 साल में जो देना है आपने, 10 साल का ब्याज सिर्फ 50,000 में, $5,000 कोलैटरल फ्री, सिक्योरिटी फ्री फंडिंग है ये, सिक्योरिटी फ्री फंडिंग है ये।
1: वेरी गुड। ते केड़े डिपार्टमेंट लो फंडिंग होंगी?
0: ये है सर्विस कनाडा, ना सीआरए नहीं, जिसे लोग डरते हैं, सीआरए नहीं है यहाँ पे।
1: ओके ते एहे पहला ता डे कोल आउंदी है फिर खाते च आउंदी है कस्टमर दे जाके में?
0: नहीं, आज आप एनरोल करते हैं, 30 से 90 डेज में आपके खाते फंडिंग आती, क्लाइंट के खाते में फंडिंग आती है, जिसका मेजर पोर्शन क्या है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स, ऊबर ड्राइवर, सेल्फ एम्प्लॉयड, ट्रक ड्राइवर, पेंशनर हैं, कॉल करें, असेसमेंट अभी कराएं, ऑफिस आए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आप ना करें, ऑलरेडी सभी लोग लाह ले चुके हैं।
1: तो इधर बच्च डेडलाइन की है जी? हम
0: सिर्फ 10 दिन रह गए हैं जी, 18 जुलाई के आसपास, देन गवर्नमेंट का नेक्स्ट अकेडमिक सेशन जब स्टार्ट हो रहा है, तो लाइक 22 जुलाई के बाद से, तो उसमें ग्रांट्स गवर्नमेंट बंद कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, जो गवर्नमेंट एलजीबीटी में 100 बिलियन की फंडिंग दे रही है, जो गवर्नमेंट यूक्रेन को 30 बिलियन दे चुकी है, वो गवर्नमेंट एजुकेशन में 4 बिलियन जो लगाती है उसका भी 2 बिलियन कर रही है, हाफ कर रही है, कट्स कर रही है गवर्नमेंट फंडिंग को, तो अभी एनरोल करें, पीछे ला रहे हैं।
1: ते एज लिमिट एक बारी दोबारा दस दो जी, एज लिमिट की है, ते की जिहड़े पेंशन ते ने सिंगल मदर ने वो भी एलिजिबल ने?
0: आज भी कम से कम 3 सिंगल मदर ही एनरोल हुए हैं, आज भी ऑफिस ओपन था हमारा, सिंगल मदर विद 3 kids, 2 kids थे, एंड देन देयर इज नो कैच इन इट, आप चाहे 75 ईयर्स के, चाहे आप 30 ईयर्स के, पेंशन पे आप एलिजिबल है, कॉल करें हमें अभी, असेसमेंट कराएं, इस चीज को मिस ना करें, आपका फायदा हाथ ही जितना है सर, हम कोई इसमें कुछ कैच नहीं है, हमारा फायदा चीटी जितना है।
1: ते चीटी जितना कितना फायदा है जी, ताड़ी फीस कितनी है, ते फीस देनी कदों?
0: इस काम में कोई अप्रोच नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है जी यहाँ पे, कोई कागज नहीं मिल रहे आपके यहाँ पे, कोई भी गवर्नमेंट के पास आपके कागज पहले से है, क्या लगता है नोटिस ऑफ असेसमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, उसमें क्या एडिट करेंगे आप, गवर्नमेंट को क्या चढ़ा के देंगे आप वहाँ पे, तो इसलिए कोई सेटिंग नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई नंबर की हेराफेरी नहीं है। फीस कितनी है? जब सेटिंग नहीं है तो फीस भी सिंपल सी है, कितनी, $199 या $499 शुरू में देनी है? नहीं, आपके गवर्नमेंट जब फंडिंग आती है, आज बैठ के मैं हिसाब लगाया, 110 बंदों की फंडिंग की चुकी जिनसे हमने पैसे भी लेने हैं, तो उसमें से $199 या $499 फीस है, फ्लैट फीस डिपेंडिंग ऑन कोर्स, वन टाइम फीस है, कोई कैच नहीं है, नो बीठी बातें।
1: 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। अखीर दे विच सानूं दस दो जे कोई हसबैंड वाइफ ने दो बच्चे ने उरू सिनेरियो ते की फर्क पैंदा, 3 बच्चे ने 1 बच्चा, उहदे नाल फंडिंग वधदी है जां घटदी है?
0: जितने ज्यादा बच्चे, जितना ज्यादा फैमिली साइज, उतनी ज्यादा फंडिंग। फैमिली ऑफ फोर को अगर आपके दो बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, बच्चे चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, देयर काउंटेड एज डिपेंडेंट्स, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं, आसान सा कोर्स कर रहे हैं जी हम, आपको 45 या 35 ईयर्स की एज में बैकपैक डाल के टिफिन बॉक्स दे के स्कूल नहीं भेज रहे, आसान से कोर्स है, फुली ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है, तो अप टू 80,000 की फंडिंग मिलती है फैमिली ऑफ फोर को, जिसमें से $40 तो ग्रांट ग्रांट ग्रांट, रेस्ट इज ऑप्शनल लोन एट 0%। अगर फैमिली ऑफ फाइव है तो 100,000, हाफ पोर्शन 50,000 ग्रांट, रेस्ट पोर्शन 50,000, ऑप्शनल लोन एट 0%। सो डिपेंड करता है आपकी फैमिली साइज कितना है, और जितनी इनकम कम है आपकी, ऊबर ड्राइवर, सेल्फ एम्प्लॉयड, ज्यादा फायदा है आपको, फंडिंग आपके अकाउंट में आती है।
1: नंबर साझा कर दो,
0: 437-264-3175, हुणे कॉल करो तो एस्टिमेट लो जी, 437-264-3175, 437-264-3175,
1: 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। यूडी ग्लोबल तो नागपाल जी ना गलबात कर सकते, बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों मेरा नंबर है 647-921-2032, 647-921-2032 ते गलबात की जा सकती है, स्टूडियो का नंबर है 416-233-7378। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੌਮਨ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਨਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਸਰਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਦੀ, ਕਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਰਿਲੀਜ਼ਡ ਸੌਂਗ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਗੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨਸਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ। ਆਓ ਗੀਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨਸਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇਰੀ

0: जी आप कैसे हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाल रंग का फूल बहुत ज्यादा मुझे पसंद है और मैं अपने आप को रिलेटेड भी करता हूँ लाल फूल की तरफ।
0: लाल फूल, ठीक है जी, ठीक है, दैट्स वंडरफुल।
1: और उसकी वजह यह है कि एक तो इसका ताल्लुक भी जो है मंगल से है।
0: ओके, ओह ठीक है।
1: तो इसके अकॉर्डिंग टू समझिए आप, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन चीजों को मैं बहुत फॉलो करता हूँ
0: जी।
1: और रंगों से इलाज भी होता है, कई वक्त रंग से भी इलाज करते लोग। तो कलर के बड़ा इफेक्ट होता, तो बहरहाल मुझे तो गुलाब पसंद है। और आपके एंड टॉपिक के मुताबिक है, गाना भी याद आया, मुकेश साहब का है
0: जी,
1: और बड़ा चंगा गाना है अपने जमाने का, राजेश खन्ना, मुमताज और शशि कपूर पे पिक्चराइज हुआ कि फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, ये करेंगे कैसे घायल, ये तो खुद घायल होते हैं। क्या लिखते साहब, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ गाना है और जो है उस्ताद खमर जलालवी के शागिर्द है। मैं खुद अपनी आंखों से देखूं, चरण स्पर्श करते थे बॉम्बे में, वो इतना चाहते थे उस्ताद खमर को। खैर बहुत बड़े लोग थे इसलिए इतने बड़े बड़े गाने लिखते, मगर बड़ा प्यारा गाना है, आप हो सके तो लगा दीजिए। और इसमें जो शायरी है और जो फूल की खूबसूरती और ये नजाकत बताए मोहब्बत की
0: जी,
1: मैंने समझता ऐसा अब कोई लिख सकता है
0: जी। टाइटल एक बार आप फिर बता सकें प्लीज मुझे।
1: फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं,
0: ठीक है।
1: गालिबन प्रेम कहानी नाम था शायद पिक्चर का, राजेश खन्ना, मुमताज, शशि कपूर।
0: ओके।
1: अगर आप मुमताज राजेश खन्ना डालेंगे तो भी आ जाता, उन लोगों की ये तो जोड़ी मशहूर थी, दे आर लाइक शाहरुख खान एंड काजल की तरह मशहूर थे अपने जमाने में दोनों।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मुमताज और राजेश 50 सुपर डुपर हिट पिक्चर दिए दोनों। बहरहाल ये गाना बड़ा मगर चंगा है, इसमें मुकेश साहब की जो उठान है ना
0: जी,
1: मैंने समझता बड़े बड़े देखा अभी भी आज तक, मगर वो मुकेश जैसा बंदा अब नहीं आ सकता, ना रफी जैसा, ना किशोर जैसा, ना जगजीत सिंह जैसा। ये वो लोग है जो जिंदगी पूरी गुजार दी है रियाजत के लिए, पैसे के पीछे कभी नहीं भागे, पैसे को लात मारते थे, पैसा उल्टा आता था इनके भाग के, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, ये हमेशा बोलते थे पैसे को, जाओ यहाँ से, परे जाओ, दफा हो जाओ, नहीं चाहिए
0: जी।
1: ये वो लोग।
0: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप जरूर प्ले करेंगे, थैंक यू सो मच, जरूर एक गाना प्ले करेंगे। सो केड़े फूल दे नाल तुसी रिलेट करदे हो जी अपने आप नूं, या केड़ा फूल तुहानू पसंद आ? कोई सवाल नहीं है, तुसी सोचोगे भी कि परम की पुछ रही आ, पर कई बार की होंदा है कि जिंदगी च असीं बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां सोचते हुए छोटियां गल्लां इग्नोर कर दिंदे आ। कई बार असीं जिहड़ियां अपनी सानू की पसंद आ कि नहीं पसंद, कई बार साडियां इह जिहड़ियां छोटियां छोटियां जिहड़ियां गल्लां जिंदगी दियां हुंदियां ना, किते वड्डे बोझ दे थल्ले दब के रह जांदियां। सो सवाल तां इह नहीं हैगा, पर फिर भी मैं तुहानूं पुछ रही हां, इहदा मैनूं लॉजिक ते कुछ लग्गिया, पर एक फुल जिहड़ा मैं तुहानूं एंड ते जाके दसूंगी जिहदे नाल असीं मोस्टली लेट करदे हां, ते उह चीज़ तों असीं मैं ते कुछ सिख्या, क्योंकि जिद्दां मैं अक्सर ही तुहाडे नाल गल करदी हुंदी हां जदों मैं कुछ सिखदी हां, मेरी कोशिश हुंदी आ कि इत्थे आ के जरूर तुहाडे नाल सांझा कीता जावे, क्योंकि एक दूजे तों सिख्या बहुत कुछ जा सकदा। सो एंड ते जाके उह फुल दी गल वी करांगे, पर तुहानूं किहड़ा फुल पसंद आ जी? कदे सोचिआ कि तुहानूं कोई फुल पसंद आ कि नहीं? बस ये कोई बहुता मैटर नहीं करता है, कि बहुत वड्डी गल नहीं सी। कोई फुल थानू पसंद है, किसी फुल दे नाल तुसी रिलेट करदे हो, फुल दा नाम तुसी दसना जी, ठीक है? 416-233-7868 416-233-7368 तुसी सुन रहे हो जी रेडियो अंदाज, मैं थोड़ी होस्ट परम थोड़ा साथ दे रही हूँ। मैं लगता है कि तुसी मेरा साथ दे रहे हो। किहड़े फुल दे नाल तुसी रिलेट करदे हो, किहड़ा फुल थानू पसंद है?

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर आपके दिलों पर दस्तक देने की इजाजत चाहता हूं, ताकि आपको आह के साथ वाह भी कहने के लिए अपनी पेशकारी के जरिए आपको मुतासिर कर सकूं। तो चलते हैं शेर व शायरी की अजीब दुनिया में, अजीब मुख्तलिफ रंगों में, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां का। राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो थोड़ा दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो, बाद में इसे जला भी देना। वैसे तो नशा बुरी चीज है, पर दानिश से शेर सुनना है तो थोड़ी पिला भी देना। बात पीने की चली है तो कहते हैं कि शायर दीवाने और रिंदों की सोच अजीब सी होती है, या यूं कहिए कि एक जैसी होती है। हाँ, रिंद जब पीता है तो फिर खुद के करीब होता है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही गजल, गुलुकार है जगजीत सिंह।

भी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है, सच्ची झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है, नाम तेरा है चंदन जैसा दिल मेरा महका देता है, खारों के साए में भी देखो वो फूल खिला देता है, ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है, ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है, चांद बड़ा है जालिम दानिश उसकी याद दिला देता है। समीन, चांद को देखना किसे पसंद नहीं, चांद भी एक महबूब की तरह होता है, जिसको देखना तो मुमकिन है मगर पाना उतना ही नामुमकिन। तो बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूं, जिसे आवाज दी है आशा भोसले।